आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Awesome. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Year।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: दिस ब्यूटीफुल वन फ्रॉम द मूवी अजय प्रेम की गजब कहानी और जन्नत से ओए होए बड़ा ही सुंदर गाना।
1: जरा सी दिल में दे जगह
0: मुझे, जरा सा नहीं चलेगा, मुझे पूरी जगह चाहिए आपके दिल में। जी हाँ, और आपकी पूरी जगह यहाँ पे मैंने खाली करके रखी है अपने इनबॉक्स में, तो फटाफट से आ जाओ 3311063 पर। और आपको ये बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो मेरा प्रॉमिस है अमेजिंग गानों का, वो तो 110% पूरा करके रहूंगी मेरी जान। जी हाँ, सेंडिंग दिलजीत असांझ की आवाज में क्या कमाल है फ्रॉम द मूवी, मैं वापस आऊंगा लौट के रात कुछ देर में, फिर पढ़ते हैं आपके मैसेजेस, तो आ जाओ 3311063 पर। स्टे ट्यून्ड ऑन जियो विंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: हाय गाइस, दिस इज अबार शक्ति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिव।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनीषा, तनीषा मेरा नाम तो अभी भी तनीषा ही है। हाँ जी, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। और राघव चैतन्य की आवाज में दिल सुना अपने इक्विवेलेंट रिटर्न से। फिलहाल मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं। सो आई गॉट अ मैसेज हियर फ्रॉम नाजनी जी, कहती हैं, मैसेज थोड़ा नीचे चला गया, रुको मुझे स्क्रॉल डाउन करने दो। या सो शी सेज, गुड मॉर्निंग, यूज योर स्ट्रगल्स एंड फ्रस्ट्रेशंस टुडे टू मोटिवेट यू रादर देन अनॉय यू। यू आर इन कंट्रोल ऑफ द वे यू लुक एट लाइफ। सो सो सो ट्रू। यू नो, अगर जिस तरह से इस वक्त आप लाइफ को देख रहे हैं, जो भी परसेप्शन के साथ, अगर वो काम नहीं कर रहा है ना, लेंस थोड़ा सा चेंज करके देख लो। यू नेवर नो, यू माइट फाइंड समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट। देन देयर इज अनदर मैसेज, और इनका नाम नहीं है, सिर्फ हार्ट इमोजीज हैं। तो गुड मॉर्निंग जी, एंड दे से गुड मॉर्निंग, लाइफ इज शॉर्ट, सो लिव इट अप, ड्रिंक इट डाउन, टेक चांसेस, अवॉइड नॉनसेंस एंड नेवर हैव रिग्रेट्स, बिकॉज एट वन पॉइंट एवरीथिंग यू डिड वॉज एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्टेड। सो सो सो ट्रू। राइट नाउ अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार ये तो मुझे चाहिए नहीं था, नो, राइट नाउ यू फील कि ये नहीं चाहिए क्योंकि आपको मिल गया। लेकिन कुछ वक्त पहले यू वर यर्निंग फॉर दिस, यू वर प्रेइंग कि मुझे मिल जाए ये चीज़। सो प्रेजेंट में जीने का, मजे करने का, और कभी भी अपनी किसी भी सिचुएशन को किसी भी सिचुएशन से और किसी और की सिचुएशन से कंपेयर नहीं करने का, वहाँ सारा फन किल हो जाता है यार। देन मुझे संतु जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग Qatar friends, and a mind filled with happy positive thoughts. May today be filled with joy, love and all your favorite things. Love you friends, Jio Bindas. So sweet. Thank you so much, Sanduji. And Shashikant Patil ji ka message aaya hai, good morning, sending your morning blessings wrapped in sunshine. And there is a very cute picture with that. और इमरान जी का भी मैसेज आया, गुड मॉर्निंग टू द वॉइस दैट मेक्स द एयरवेव शाइन, मे योर माइक स्टे हॉट, योर कॉफी स्टे वार्म एंड योर शो ब्रिंग मैसिव स्माइल्स टू एवरी लिसनर टुडे। इंशाल्लाह यही मेरी भी उम्मीद रहती है। और जस्सा जी का भी गुड मॉर्निंग आ गया, जी कैसे हैं आप, सब ठीक चल रहा है कि नहीं लाइफ में?
1: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
0: हाय हाय,
1: लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस।
0: बस ऐसे वेरी गुड वेरी नाइस लगते लगते पूरा दिन एकदम मस्त वाला जाना चाहिए हमारा। हमने स्ट्रेच नहीं लेनी छोटी छोटी चीज़ों पे, ठीक है? याद रखना, बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी चीजें होती रहती है। सुंदरी रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. Experience more with ओरेडू.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

आदिम असलम और अलीशा चुनाव की आवाज में तेरा होने लगा हूँ फ्रॉम द मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी. एंड बाय द वे 21st को मेरा बर्थडे था, ठीक है. एंड यूजुअली लाइक बचपन से दिस हैज़ बीन हैपनिंग कि बर्थडे के पहले मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी. यू नो आई वुड आस्क माई मदर कि देखो मुझे तीन डिफरेंट ड्रेसेस चाहिए, एक तो मैं स्कूल पहन कर जाऊँगी, देन दूसरा जब स्कूल से वापस आऊँगी तब, एंड देन शाम को जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तब के लिए, ठीक है. एंड आई वॉन्ट टू बाई चॉकलेट्स बिकॉज मुझे वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है स्कूल में, और ऐसे बहुत स्पेशल फील करना है पूरा दिन ना कि मेरा फेवरेट खाना होना चाहिए, एंड दिस एंड दैट, फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट. लेकिन जैसे जैसे जब बड़े हो रहे हो, लाइक दिस टाइम व्हेन इट वाज माय बर्थडे आई वाज सो लाइक हाँ ठीक है ओके आ जाता है फाइन. एक दिन पहले मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अपने रूम की, यू नो लाइक डीप क्लीन. I don't know why I'm getting so anxious and I'm like, यार एकदम डीप क्लीन कर लेते हैं, शायद थोड़ा काम डाउन फील करूँ मैं. और काफ़ी हद तक काम किया वो. एंड देन वेन पीपल कॉल यू टू विश यू, इट फील्स सो हैप्पी, लाइक गुड राइट, हैप्पी फील होता है आपको कि यार आई मीन समथिंग टू देम, दे आर टेकिंग आउट देयर टाइम टू विश मी, टू कॉल मी, राइट, मेरे स्पेशल दिन को और स्पेशल बनाने में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं. I was like, इतने कॉल्स क्यों कर रहे हैं लोग मुझे, इट्स ओके बर्थडे तो आता रहता है. एंड देन आई वॉज जस्ट अनॉयड बाई माई सेल्फ कि भाई ये क्या कर रही है तनीषा, इट्स योर बर्थडे. एंड देन फाइनली जब मैंने ऐसे खुद को डांटा तब मुझे समझ आया कि नहीं, दिस इज़ नॉट ओके, योर प्रिविलेज दैट यू आर गेटिंग दिस ट्रीटमेंट ऑन योर बर्थडे, तो इसको फुल ऑन एन्जॉय करो. एंड आईव गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो, सो थैंक यू सो मच मेरी जान. बाय द वे मेरे बर्थडे की बात तो हो गई, आज पता है किसका बर्थडे है, आज हमारी सिमरन का बर्थडे है. यस सर, सो वी गोना सेलिब्रेट दैट ऑल्सो. लेकिन फिलहाल सुनते हैं के की आवाज़ में जरा सी दिल में दे जगह. स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास.

फ्यूजन और यू कैन से मैशअप, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने एक साथ क्लब करके तो ऐसा कमाल चीज तो बनेगी यार। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, दनीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर। और बस अगले महीने से हम ब्लैक बोर्ड स्टोरीज फिर से शुरू करेंगे, व्हेन यू नो किड्स विल स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, तो उनके लिए मैं स्पेशल सवाल लेकर आऊंगी। बट फिलहाल बेयर विद माय लेम जम्स, मेरी जान सो आज का जो सवाल है बहुत आसान है, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि एक बीमार ईगल को, जी ईगल को क्या कहेंगे? एक ईगल बीमार है तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेरे सवाल में ही मेरा जवाब भी है, गौर से सुनिए। एक बीमार ईगल को इंग्लिश में एक वर्ड में क्या कहेंगे? 3311106 पर आपने मुझे बताना है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 4444106 पर। एंड यू नो सिंस आई हैव स्टार्टेड डूइंग दीज लेम जैम्स, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट नॉट जस्ट यू पार्टिसिपेट लाइक ट्राई टू गेस द आंसर्स, पर आप लोग मुझे भेजते भी हो सोशल मीडिया पर, एवरीबडी इज डूइंग दिस राइट। तो सो मेनी ऑफ यू कीप सेंडिंग मी द वीडियोज और द पोस्ट अबाउट लेम जैम्स ऑन माई इंस्टाग्राम एंड दैट फील सो हैप्पी कि यार दे आर ऑल्सो इन्जॉइंग विद मी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। करते रहो वो काम, अच्छा लगता है। बाकी फिलहाल जवाब दो मुझे 3311106 पर। एंड द क्वेश्चन इज कि एक बीमार ईगल को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एक ही वर्ड का आंसर है, बताएं 3311106 Sending fresh song of the hour for you. Stay tuned, Andrew. And that's me, John.

0: से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसुद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। वेन्यू पार्टनर अबूसुद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबूसुद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the heart.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग अर्जुन तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

बट आई थिंक एवरीबडी कैन डांस. सबको ऐसे यू नो डांस कॉम्पिटिशन लेवल प्रो वाला डांस आने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत डांस तो सभी कर लेते हैं यार, और बहुत बढ़िया चीज़ होती है. मतलब द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर आउट ऑफ ऑल इज डांसिंग, आई एम टेलिंग यू. Sending all these amazing tracks in this hour for you. Filhal Maashuka from the movie Cocktail 2. Stay tuned on Jeevan Das.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब

0: बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Tanisha.
1: Adif Aslam ki awaaz mein tu chahiye from the movie Bajrangi Bhaijaan only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath with us morning's children aap. Obviously the answer is no because it is 34 degrees right now. Theek hai, temperature still okay. It feels like 46 degrees. What is this behavior? No. So main to advise nahi karungi bahar nikalna par dekho nikalna to padega. क्योंकि काम तो करना पड़ता है जाना पड़ेगा ऑफिस तो और लाइक वट एवर थिंग्स यू हैव टू डू यू हैव टू गो आउट फॉर दैट सो प्लीज़ बहुत सारा सनस्क्रीन लगा कर निकलिए और साथ में अगर आपको कोई भी एलर्जीज है ना डस्ट से तो ज़रा मास्क वगैरह साथ रखिए क्योंकि इट इज़ गोना बी वेरी विंडी एंड डस्टी सो आपकी जो एलर्जीज हैं वो ट्रिगर हो सकती हैं सो प्लीज़ ख्याल रखें उस चीज़ का स्टे हाइड्रेटेड मेरी जान लाइट खाना खाइए तो बेहतर रहेगा फिलहाल और आज का जो हाइएस्ट टेम्परेचर जाएगा वो जाएगा 41 डिग्रीज और लोएस्ट 34 जो कि इस वक्त है बाकी दिन में जो हमारा बुरा हाल होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाइए कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी अपना बाहर का सारा काम निपटा कर सीधा अंदर ही रहिए वेर एवर यू नो इन द शेड और अपना ख्याल रखिए क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान और संतरा यू रेडी ऑलिव टू बिंदास
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: Danisha.
1: Danisha. Bueno, Mr. Sagi, as me know, as a shikaram. What a beautiful track, Carol, on Radio 106.3 FM. Danisha, aapke saath. Bindas morning chal raha hai yahan par. Aur कदर में 6 नए गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन होने वाले हैं 26 से 27 एकेडमिक ईयर में. यस, जो ये नए स्कूल है दे विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑब्वियसली और अकोमोडेट करेगा द ग्रोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कतार. सो सबको प्रॉपर एजुकेशन और अटेंशन मिल सके. और ये जो मूव है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कतर्स एफर्ट्स टू एक्सपैंड एंड इम्प्रूव द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने ये भी अनाउंस किया है कि नए अपॉइंटमेंट्स भी होंगे फॉर द स्कूल प्रिंसिपल्स. सो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है. एंड द न्यू स्कूल्स एंड लीडरशिप अपॉइंटमेंट्स आर एम्ड एट एंश्योरिंग अ स्मूथ स्टार्ट टू द न्यू एकेडमिक ईयर. और ये जो एक्सपेंशन है ये स्टूडेंट्स को और ज्यादा एक्सेस देगा टू गवर्नमेंट एजुकेशन फैसिलिटीज. एंड इट इज सच एन अमेजिंग एंड मैसिव स्टेप towards better future and better education, right? Stay tuned to Radio Olive. Jio, Pindas.

0: Olive 106.3 FM Gio Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: फिर नहीं आप पर डेफिनेटली मिलेंगे 27th ऑफ अगस्त को यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और 27th ऑफ अगस्त को हो रहा है बैक टू स्कूल बैच जिसके लिए रजिस्ट्रेशंस अब ऑफिशियली क्लोज हो चुके हैं बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया है आपने थैंक यू सो मच फॉर रजिस्टरिंग एंड जिन्होंने भी रजिस्टर किया है सब ने पहुंचना है अबू सिद्रा मॉल में 27th अगस्त को दोपहर 3 to 7 PM तक फॉर बैक टू स्कूल यस और अगर आप कॉन्फर्मेशन का वेट कर रहे हैं तो मेरी जान रजिस्ट्रेशन इज द कन्फर्मेशन फॉर यू जी हाँ फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम 3311-1063 पर और यू कैन कॉल 4444-1063 पर सो गेट रेडी फॉर लॉट्स ऑफ फन लॉट्स ऑफ मस्ती और एक शानदार इवनिंग बिफोर द स्कूल स्टार्ट्स विद ऑल द क्यूटीज आउट देयर एंड देयर पेरेंट्स ऑब्वियसली सो डू नॉट फॉरगेट 27th ऑगस्ट अबू सिद्रा मॉल 3 to 7 PM
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे
3: हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ओलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश।

0: आबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है।
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

0: Listen to my songs on 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.
1: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
2: I'm a number one Radio Olive. Abu Hoggy. Abu Hoggy. Bindas Morning.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: चांद मेरा दिल मूवी से बहुत सुंदर गाना राघव चैतन्य और जोनता गांधी की आवाज में खासियत ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। और भाई कतर ने 20 मेडल्स जीते हैं वेस्ट एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। जी हाँ, और ये जो टैली है इसमें 4 गोल्ड मेडल्स हैं, 2 सिल्वर है और 14 ब्रॉन्ज है। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत ही कमाल परफॉर्म किया है सभी ने। और कतर ने तो आप देख ही रहे हो कितना बढ़िया काम कर दिया है।

0: बॉम्बे वाइकिंग से ये ब्यूटीफुल ट्रैक और फिर दिस वन है
1: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे
0: कितनी भी बार सुन लो इस मूवी के गाने ना मजेदार ही हैं जी मोहित चौहान की आवाज में खूबसूरत गाना और ये ब्रांड न्यू ट्रैक फॉर यू फ्रॉम द मूवी आवारा पंटू
2: मौज लैन लगा मेरी अखियां दा नूर मेरा
0: पिया घर आया होम कमिंग ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम फिलहाल भेज रही हूँ कूल सॉन्ग ऑफ द आवर स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान
3: कूल सॉन्ग
0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर

0: हमेशा।
1: मैं हूं मूवी से सुन रही की आवाज में बहुत ही कमाल का गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। और यार पीसफुल तरीके से जब आप बैठना चाहो या फिर आराम से ऐसे बैठ के काम वाम हो गया है मे बी, या फिर करने का मन नहीं है, थोड़ा सा वक्त है, तो आराम से तसल्ली से बैठ के चाय पीने का मन हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? कोई अच्छी कोजी सी कॉर्नर ढूंढते हैं अगर हम घर में है तो, या फिर ऑफिस में है तो वहाँ पे भी ये तो करना ही पड़ता है, या फिर अपनी डेस्क पे ही आराम से बैठकर गाने वाने सुनकर ईयरफोन्स लगाकर हम चाय पी लेते चुपचाप, राइट? एंड देन वी गो बैक टू आवर वर्क, राइट? वरुण धवन आराम से चाय पीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक फार्म लैंड खरीद ली जी। वो वहाँ पर अब सुकून से चाय पी रहे हैं और उस फार्म को, एग्रीकल्चर फार्म जो उन्होंने खरीदा है उससे वो अपना अभी तक का बिगेस्ट अचीवमेंट कह रहे हैं। वेल आई डू नॉट डिसअग्री विद दैट, और यू नो व्हाट एग्जैक्टली ही इज ट्राइंग टू डू बाय बाइंग दैट फार्म, बट आई वाज जस्ट अपॉल्ड एंड बॉफल्ड बाय दैट स्टेटमेंट कि यार मुझे ना पीसफुल चाय पीनी थी तो मैंने ये फार्म खरीद लिया। क्या फार्म खरीद लिया चाय पीने के लिए? क्रेजी है दुनिया भाई। बट या दैट्स दी एस्पिरेशन, वहाँ तक पहुँचना है कि पीसफुली चाय पीने के लिए मैं एक ऐसे फार्म ही खरीद लूँ कि भाई मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मैं यहाँ आराम से अपनी चाय पीऊँगी। हाँ तो इंशाल्लाह हम सबके साथ यही हो, हम सब वहाँ तक पहुँच जाएँ। फिलहाल हम सुनते हैं एक बढ़िया गाना, गिव मी सम सनशाइन, आई डेस्परेटली नीड इट राइट नाउ, बिकॉज मैं स्टूडियो में ना मुझे तो मिल नहीं रही है। आपको अगर मिल रही है बाहर तो प्लीज़ सनस्क्रीन लगा कर ही उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम जो जाती है, ठीक है? स्टे ट्यून्ड एंड जी विद अस।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Shesha movie se Jasleen Rall aur Bee Prak ki awaaz mein Ranjha only on Radio 106.3 FM Tanisha aapke saath Bindaas Morning chal raha hai yahan par aur bhai ye jo AI versus human wala debate chal raha hai kafi waqt se jab se ye specify karna shuru kar diya companies ne ki you know AI can replace human and kafi companies ne ye kar bhi diya tha but karne ke baad the you know management realized ki bhai जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ना वो एकदम लो लेवल का हो गया है सो वी नीड ह्यूमंस बैक फॉर दैट नाउ द कंपनीज आर हायरिंग पीपल बैक क्योंकि जो क्वालिटी थी उनकी काम की कस्टमर सर्विस पीपल वर नॉट हैप्पी विद वट एवर दे वर प्रोवाइडिंग और लाइक यू नो जो भी इंटरेक्शन हो रहा था लोगों को नहीं समझ में आ रहा था तो दे स्टॉप्ड यू नो यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ फॉर different companies मैं किसी एक का example लेकर नहीं बोल रही हूँ काफ़ी सारी IT companies ने ये किया था you know mass ऐसे लोगों को fire कर दिया और कहा कि हमने तो AI रख लिया है अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अब मास रिहायरिंग हो रही है क्योंकि AI ने काम खराब कर दिया है डबल कर दिए कॉस्ट बेसिकली कॉस्ट कटिंग करी थी उन्होंने और AI ने बढ़ा दिए उल्टा और ऊपर से क्वालिटी भी लो हो गई है सो आई थिंक वी शुड सेटल दिस डिबेट नाउ कि AI कैन रिप्लेस ह्यूमन नो इट कैन जस्ट मेक आर वर्क मोर एफिशिएंट और उसको और एनहेंस कर सकता है पर रिप्लेस I don't think, you know, jiska kaam usi ko saaje basically. Sending fresh song of the hour for you. Stay tuned and Jio Bindaas.
1: Radio Olive Pa. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

सुनिधि चौहान की आवाज में विकी और विद्या का वो वाला वीडियो से सजना वे सजना इट्स नॉट दैट बैड ऑफ अ रेंडिशन ठीक है बट ओजी तो ओजी ही रहता है. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ में 10 मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों के यू नो नोटिफिकेशन ऑफ होने की नोटिफिकेशन आ रही है. How ironic that sounds. But yeah, people are getting this pop-up ki aapki notification band kar di gayi hai. If you want to turn it on, you have to go to settings. And everybody is going crazy kyunki kyun ho raha hai ye. Ya to kabhi kabhi sirf messages ki notification aa rahi hai. And then, you know, if somebody is liking or following you or something, to uski notifications nahi aa rahi hai. And that is happening with me also. And yesterday when I saw a lot of people posting about it, tab mujhe realize hua ki arre, main akeli nahi hu. आई थॉट होगा कुछ बग वग इंस्टाग्राम में. ठीक है आ जाएगा जब आना होगा और अच्छा है जितनी नोटिफिकेशन कम आए उतना बेटर क्योंकि बस ज़रा सा फ़ोन वाइब्रेट हुआ कि उस पर ध्यान गया जो भी आप कर रहे हो उससे फोकस साइड हो जाता है. नॉट दिस जब आपसे बात कर रही हूँ तो फिर कोई लेना देना नहीं होता है बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सेइंग एंड ये सबके साथ होता है तो इट्स बेटर कि नोटिफिकेशन बंद ही रहे इन फालतू ऐप्स की. तो वैसे सबसे ज़्यादा वक्त मेरा इंस्टाग्राम पे ही जाता है. अगर इंस्टाग्राम ने ये सुना कि मैंने उसे फालतू बोला है तो उसे बहुत बुरा लगेगा. बट देर इज़ अनदर अपडेट विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग. उसके बारे में मैं कुछ देर में बताती हूँ बिकॉज जो गाना आने वाला है वो बहुत सुंदर है और वो कह रहा है मैं इंतज़ार नहीं करना चाहता. तो आइए सुनते हैं क्यों मज़ा आ रहा है फ्रॉम द मूवी बंदर इन द वॉइस ऑफ विशाल मिश्रा. स्टे ट्यून्ड एंड रिवन दस.

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है।
3: वेन्यू पार्टनर अबूसिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबूसिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
3: एंड
4: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
3: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
4: कॉल 7022525।
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
5: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
3: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: हाय, मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: प्यार किया तो डरना क्या मूवी से बहुत ही आइकॉनिक गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है अब टिकटॉक मैंने कहा था ना आके बता दूं इंस्टाग्राम पे एक नया अपडेट कुछ लोगों के फोन में आ चुका है कुछ लोगों के फोन में आना बाकी है मेरे अभी तक आया नहीं है बट सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉट इट और मैंने देखा वीडियो कुछ लोगों को मिल चुका है ऑलरेडी सो द अपडेट इज बेसिकली कुछ टाइम पहले एक ये अपडेट आया था दैट आप कोई भी वॉइस मैसेज अगर भेज रहे हो इंस्टाग्राम पे तो आप उसमें इफेक्ट्स डाल सकते हो एंड इट वॉज सुपर फन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम मैं बस वही यूज़ कर रही थी बड़ा मजा आता था अनॉय करने में वैसे लेकिन अभी एक और आ गया नाउ यू विल टाइप एनी मैसेज यू कैन मेक इट इन टू अ सॉन्ग थ्रू ए आई ऑब्वियसली वहाँ इंस्टाग्राम में ये आपको ऑप्शन मिलेगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको उसे हिप हॉप गाना बनाना है यू नो और यू वॉन्टेड टू बी रेगे और मेटल वट एवर काइंड ऑफ म्यूजिक यू वॉन्ट टू क्रिएट विथ वट एवर मैसेज यू हैव रिटन वो बना देगा एंड देन इट विल गो लाइक दैट एंड इट सीम्स और इट फील्स सुपर फन मैं तो वेट कर रही हूँ कि फटाफट से ये वाला अपडेट आए एंड आई स्टार्ट अनोइंग माई फ्रेंड्स विद दैट ये तो देखो होना ही है एंड आई एम श्योर कि आप भी इसका इंतजार करेंगे वंस यू सी दैट वीडियो जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनकी सो यार जल्दी ये अपडेट आने वाली है रेडी रहिए अपने मैसेजेस को गानों में बदल के भेजने के लिए है कमाल है यार कहीं कहीं तो अच्छा लग रहा है मुझे एआई का जो इस्तेमाल हो रहा है दुनिया में वेल सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे स्टे ट्यून्ड जीवनदास
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर ऑफर।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
0: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: दिल चाहता है मूवी से शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में बहुत ही कमाल का गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर एंड टू द पीपल हु आर आस्किंग कि हमने रजिस्टर किया है बैक टू स्कूल बैच के लिए तो कन्फर्मेशन कब मिलेगा रजिस्ट्रेशन कर लिया दैट इज एज गुड एज कन्फर्मेशन मेरी जान हाँ जी बट फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप हमें कभी भी रीच आउट कर सकते हैं यू कैन मैसेज एस 3311063 पर और यू कैन कॉल 4444106 पर 27th ऑफ ऑगस्ट को होने वाला है बैक टू स्कूल बैश अबू सिद्रा मॉल में दोपहर 3 से लेकर शाम 7 बजे तक बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें प्लान है आपके लिए और बहुत सारा फन होने वाला है बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है और साथ में हमें भी यस सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट डू नॉट फॉरगेट द डेट 27th ऑफ ऑगस्ट
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the

अनुप जैन की आवाज में अर्ज किया है ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM दिनिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और जी वक्त हो गया है मेरे जाने का, मिलेंगे कल सुबह 6 बजे. पर जाते जाते आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अगर हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए. radioalive.qu इज द हैंडल. इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, सब जगह फॉलो कर लो, ठीक है. आपसे कोई भी हमारा पोस्ट जो है वो आपकी नज़रों से बचना नहीं चाहिए. दैट्स ऑल आई वॉन्ट. बाकी अपना ख्याल रखें. इट्स टू हॉट एंड इट्स टू विंडी, सो उस हिसाब से ही बाहर निकलिएगा. अगर कोई एलर्जीज वगैरह है तो कीप अ मास्क विद यू एंड स्टे हाइड्रेटेड. और बहुत सारा सनस्क्रीन लगा कर जाओ, ठीक है. अब बहुत इंपॉर्टेंट हो, इस चीज़ को कभी नहीं भूलना और अपना ख्याल रखना. और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

देखो यार, यादों के जुगनू भले ही जंगल में रहते हों, लेकिन आपकी ये जो दोस्त है कसुस, ये जो है ये कतर में ही रहती है और हमेशा आपसे बात करने के लिए एकदम वक्त पे आ जाती है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कसुस। शो आपकी लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जो अगर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए, 90s के गाने से हमने शुरू कर दिया है अपना शो, एंड अमेजिंग वाला शो जो रहेगा हमारा, इसे हम मैनिफेस्ट करते हैं। वैसे थोड़ी सी सर्दी हो गई है मुझे, तो मेरी इस आवाज़ के साथ आज आपको मुझे झेलना पड़ेगा। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि ये रिचुअल सा हो गया है मेरा, हर एक दो महीने में मेरे को सर्दी हो जाती है। एंड जब मैं अपने घर वालों को बताती हूँ ना कि मुझे सर्दी हो गई है, तो वो लोग मुझे जो है मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं यार। वो लोग कहते हैं कि यार इतनी गर्मी पड़ रही है कतर में और तुम्हें सर्दी हो गई है, ये क्या है? अब मैं क्या करूं अगर मेरी इम्यूनिटी वीक है तो? यार मैं एसी में रहती हूँ, मुझे जो है सर्दी हो जाती है। मैं बाहर जाती हूँ, मुझे सर्दी हो जाती है। मैं ठंडा पानी पी लेती हूँ, मुझे सर्दी हो जाती है। मैं ठंडे पानी के बाद चाय पीती हूँ, मुझे सर्दी हो जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे देखिए, एक ही चीज़ है जो इस मतलब मूड के साथ भी मुझे अच्छा फील करा सकती है, वो है आप लोगों के मैसेजेस। तो जल्दी से, यूसुफ खान जी ने तो ऑलरेडी मैसेज कर रखा है, आप लोग भी अपना फ़ोन उठाइए, 3311063, ये जो है हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर जल्दी से आके मुझे मैसेज कर दीजिए। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, जो कहना है वो कह दो यार। 3311

0: Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:12. दैट इज 10:12. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
2: सुनो सुनो सुनो,
3: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
4: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
3: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
5: Hi, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: कि आपका संग मिल जाए फिर और क्या चाहिए जीवन में। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो आज जो है मौसम अच्छा ही लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि गर्मी थोड़ी सी जो है वो कम हुई है, लेकिन ये बात जो है ये जो भ्रम है मेरा ये टूट जाता है द मिनट आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस। मतलब मैं घर से बाहर पैर निकालती हूँ, दो मिनट खड़ी रहती हूँ और फिर ऐसे जो है पसीना बहने लग जाता है जैसे बॉटल जो है हम भरते हैं तो ऑन छोड़ देते हैं ना टैप कई बार, तो जो भरने बहने लग जाता है बिल्कुल उसी तरीके से। अभी देखिए 38 डिग्री सेल्सियस इस वक्त करंट टेम्परेचर हो रहा है दोहा में एंड थोड़ा सा क्लाउडी सा माहौल रहने वाला है आज। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। सनस्क्रीन देखिए अगर क्लाउडी हो मौसम या ना हो आपको लगानी ही है। एंड देखिए ये जो मेरा फ़ोन है ये कह रहा है पार्टली क्लाउडी रहने वाला है, सो अगर आप लोग मुझे फोटोज़ भेज देंगे कि इस वक्त बाहर माहौल कैसा हो रहा है मौसम कैसा हो रहा है तो मुझे मजा आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्टूडियो है इसमें खिड़की भी नहीं है, मैं बाहर देख ही नहीं सकती कि बाहर मौसम कैसा हो रहा है। तो आप लोग बनिए मेरी आंखें, अपने कैमरा को उठाइए एंड अगर गाड़ी आपकी रुकी हुई है या आप कहीं खड़े हुए हैं तो मुझे जल्दी से एक फोटो खींच के जो है भेज दीजिए 3311063 पर। फिलहाल जो है मैं अगर कुछ क्वेरीज हमारे पास आ रही है कि बैक टू स्कूल जो एक इवेंट होने वाला है उसमें अगर हमने रजिस्टर कर दिया है, हमारे पास कोई कॉल नहीं आया। देखिए अगर आपने रजिस्टर कर दिया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंफर्म समझे 27th को हम मिल रहे हैं अबू सिद्रा मॉल में। बाकी डिटेल्स जो है मैं आगे बताती रहूंगी। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना इस हीट को बीच करने के लिए आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पे, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए स्कूल सॉन्ग ऑफ द आवर को। मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, आपको एक अमेजिंग सी व्हिमसिकल सी वेबसाइट बताऊंगी जिससे अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप उससे अपना स्ट्रेस जो है वो कम कर सकते हैं। अगर जो है मैसेजेस भी पढ़ेंगे आप लोगों के, फोटोज देखेंगे कि कौन कौन सी आप लोगों ने मुझे भेजी है 3311063 पर भेज दीजिए। फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए और कहते रहिए आपकी कशिश के साथ जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

गाना डेडिकेट करते हुए जी आगे बढ़ते हैं. वेलकम, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिवर. मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अब देखिए यार, मैं तो आपकी लाइफ मस्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप सब भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. मैंने जैसे कहा था कि हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये ड्रॉप कर दो ताकि मुझे अच्छा लग जाए, सर्दी हो रखी है थोड़ी सी तो थोड़ा बेटर फील हो जाए, बाहर का मौसम मैं देख लूँ, इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो में थोड़ी लाइवली फीलिंग तो आए. और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और बहुत सारी फोटोज बरसा दी है. जैन अली जी ने जो है मुझे फोटो भेजी है. देखिए जैसा मेरा फोन कह रहा था कि बाहर जो है थोड़ा क्लाउडी सा मौसम होने वाला है, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है. एंड इनके जो इनका जो फोन है वो बता रहा है 43 डिग्री सेल्सियस दोहा का टेम्परेचर है. पता नहीं क्यों ये अलग अलग डिफरेंस जो है वो दिखाता है, पर धूप तो बहुत दिख रही है. देखो कहीं से भी क्लाउडी तो नहीं लग रहा है मौसम. एंड मुझे एक और मैसेज आया जिसमें लिखा है टेक केयर मैडम जी. ओके एंड धूप इनकी फोटोज में भी बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है. सर का नाम जरा पढ़ लेते हैं हम. ओके इनका नाम है श्रीनिवास जी. ओके श्रीनिवास जी थैंक यू सो मच, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. थैंक यू. एंड मोहम्मद यूसुफ खान जी ने जैसे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, हैप्पी संडे मॉर्निंग, कैसे हैं आप, कैसा रहा आपका वीकेंड, बहुत अच्छा रहा. एंड इन्होंने लिखा है कशिश यस, आपकी आवाज़ से लग रहा है कि तबीयत खराब होने की कगार पर है, अल्लाह सेहत दे, आमीन. बस आप लोगों की दुआ चाहिए तो फिर कुछ नहीं होगा. और ओके अभी वैसे कोल्ड और फ्लू का टाइम चल ही रहा है हमारे ऑफिस में भी, हर दूसरे इंसान को जो है कोल्ड हो रहा है. सो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. एंड मौसम के बारे में भी इन्होंने कहा है ये मौसम ऐसा ही है, चेंजिंग वक्त के साथ सभी जो है लपेटे में आ जाते हैं, अल्लाह सभी को सेहत दे. बस ऐसी सबके लिए दुआ करते रहिए, बढ़िया है. एंड गोकुल जी ने भी गुड मॉर्निंग लिखा है और इन्होंने भी कहा है कि मुझे जो सर्दी है, सर्दी में अगर कोई मुझसे बात करता है तो मैं सिर्फ हाँ हूँ कहता हूँ बस. तो आप जो है आप बोल रही हैं मतलब आप बहुत स्ट्रांग है. थैंक यू सो मच. बस ऐसे ही कोई जो है चलते फिरते मेरी तारीफ करते मुझे अच्छा लग जाता है. एंड रितेश जी ने भी गुड मॉर्निंग कहा है. एंड इन्होंने अपने बच्चे को जो है अबू सिद्रा मॉल में जो हमारा बैक टू स्कूल होने वाला है उसके लिए रजिस्टर कर दिया है. सो मैं एक बार और बताना चाहती हूँ कि अगर आपने रजिस्टर कर दिया है फॉर्म पर जाकर हमारी वेबसाइट पर, तो अपना रजिस्ट्रेशन कन्फर्म समझिए. बाकी मुलाकात जो है वो होगी अबू सिद्रा मॉल में 27th August को. डिटेल में बात करेंगे इस बारे में लेकिन थोड़ी सी देर में. फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत वाला गाना जो है सलीम मर्चेंट और सोनू निगम की आवाज में आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कसूस के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: In association with
2: Nesto Hypermarket, now open at Old Passport Office, Karafa.

0: जी मैं हाँ हरभजन मान तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: सो मेरे हमदम हर दम मैं आपका साथ दूंगी, और मतलब जब भी आपको स्ट्रेस होगा तो बस आपको आंखें बंद करके मेरी बातों को याद करना है, आपको स्ट्रेस को जो है ऐसे चुटकियों में मैं दूर भगा दूंगी। काश जैसे आपका स्ट्रेस में चुटकियों में दूर भगा रही हूँ, मेरी सर्दी भी ऐसी चुटकियों में दूर भाग जाती है यार, कितना मजा आता ना। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि यार मैं हर रोज की तरह आज भी आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। अब देखो ये जो मैं तरीका बताने वाली हूँ, इससे आपका स्ट्रेस कम हो या ना हो, लेकिन जब आप ओवर थिंक करते हो ना, तो उस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस से आप खुद को रिकवर कर पाओगे। एंड थोड़ा सा अलग तरीका है, ट्राई करके देखो। डूम स्क्रोलिंग से तो देखो बहुत ज़्यादा बेहतर है, मतलब अगर आप बैठते हो और फिर एक बार स्क्रोल करना शुरू जो करते हो तो फिर एंडलेसली स्क्रोल ही करते जाते हो जब तक आपको नींद ना आ जाए, तो उससे बचने का एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है। सो आपको एक पिक्सल थॉट नाम से वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको बस जाके सर्च करना है पिक्सल थॉट, उस नाम की वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड वहाँ पर एक स्टार आएगा, ठीक है, एक स्टार आएगा एंड उस स्टार पर आपको अपना कोई भी थॉट लिखना है, चाहे वो थॉट आपको परेशान कर रहा हो, चाहे आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको बस उसको जो है लिख देना है एज इट इज़। एंड आपके सामने एनिमेशन के थ्रू जैसे जैसे वो स्टार गैलेक्सी में जो है छोटा छोटा छोटा छोटा छोटा छोटा होता जाएगा, गुम होता जाएगा, दूर होता जाएगा, वैसे वैसे वो थॉट भी आपके दिमाग से अलग दूर जाता जाएगा, ऐसे आपको फील होगा। सो कई बार ना ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि कई बार जब आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हो, मतलब आप उसे सॉल्व कर सकते हो, एंड एक बार आपने पॉइंट वाइज लिख दिया कि आपको क्या क्या परेशान कर रहा है एंड किस बारे में आप सोच रहे हो, तो वो प्रॉब्लम जो है फिर प्रॉब्लम रहती ही नहीं है, वो बस आपकी सोच है, आपकी ओवर थिंकिंग है। सो बस एक बार ये वेबसाइट ट्राई करो, एंड ऐसे ही बहुत सारे अब वेबसाइट्स बन चुके हैं जो आपको रिलैक्स कर देते हैं, सो उनके पे भी हम डेली जो है बात करते रहेंगे। एक एक वेबसाइट या एक एक ऐसा कोई ऐप, कोई फीचर जो है मैं आपको बताती रहूंगी। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपको फ्रेश थॉट्स की जरूरत है, इसलिए ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर जो है वो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ा के इंजॉय करो। है जवानी तो इश्क होना है का टाइटल ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इंजॉय करो। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड टू बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। Song of the Hour. Yeah, guys.

0: स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:10, दैट इज 11:10. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
1: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
2: Oh no! फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. वेन्यू पार्टनर अबूसिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबूसिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
2: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
2: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
3: कॉल 7022525.
2: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
1: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतस नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: शर्म आ रही है मुझे ये बताने में, लेकिन पहले जो है इस गाने का जो लाइन्स है, लिरिक्स है, वो मुझे लगता था देखे जरा, बाद में पता चला वो के सरा सरा सरा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, अपने जीवन में हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जनरली प्रिटेंड करते रहते हैं, मतलब ऐसे हमें बॉलीवुड ने भी सिखाया है ना कि जिस झूठ से किसी का घर बसता हो वो झूठ झूठ नहीं होता। तो बस लाइफ में ऐसे बहुत सारे झूठ जो है वो हम लोगों से बोलते हैं, खुद से बोलते हैं एंड कई बार प्रिटेंड भी करते रहते हैं। जैसे मैं जो है काफ़ी लंबे टाइम तक जो है ये प्रिटेंड करती थी कि मुझे जो है कॉफ़ी पसंद है, चाय नहीं, बिकॉज मेरे आसपास के सब लोग कॉफ़ी पीते थे एंड उनके साथ फिट इन होने के लिए मैंने कोशिश की थी कि यार मैं कॉफ़ी पी लूँ, बट ज़्यादा टाइम मैं ये प्रिटेंड कर नहीं पाई और उन्हें पता चल गया कि मैं चाय पीती हूँ। एंड अब जो है वो सब बैठ कर चाय पीते हैं, उनकी कॉफ़ी जो है वो साइड हो चुकी है। सो कई बार जो है सच एक्सेप्ट कर लेना भी एक बड़ी चीज़ होती है, लेकिन जो लोग प्रिटेंड कर रहे होते हैं उन्हें आदत हो जाती है तो वो प्रिटेंड करते रह जाते हैं। अब आप कहेंगे कशिश इतनी पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो, सीधे मुद्दे पे आओ। तो मुद्दे की बात यह है कि मैंने अभी एक न्यूज़ पढ़ी, वैसे तो इसको वक्त हो गया है काफ़ी, लेकिन मैंने अभी अभी पढ़ी कि एक अंकल जी हैं, उन्होंने 62 ईयर्स अपनी शादी में जो है ये प्रिटेंड किया कि उन्हें सुनाई नहीं देता, वो डेफ हैं एंड वो बस इसीलिए कि उनको अपनी वाइफ की बातें जो है वो सुननी ना पड़े, वो इग्नोर कर सके। और फिर जो है एक दिन उनका भांडा फूट गया एंड उनकी वाइफ को पता चल गया कि उन्होंने 62 ईयर से ये प्रिटेंड करके रखा है कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता एंड आंटी जी बिचारी जो है कोई शिकायतें नहीं कर रही थी उनसे। लेकिन फिर मुझे जो है वो सीन मेरी आंखों के सामने आ रहा है जब आंटी जी ने 62 ईयर्स का पूरा बदला एक दिन में निकाला होगा एंड पूरी शिकायतें एक साथ कर दी होंगी। आप बताइए यार, रिश्ते में ऐसे कौन से छोटे मोटे झूठ जो है वो बोले जाते हैं। वैसे अंकल जी ने तो देखो बहुत बड़ा झूठ बोला था, लेकिन फिर भी रिश्ते में ऐसे कौन से छोटे मोटे झूठ जो है वो बोले जाते हैं जो कि गलत कंसिडर नहीं करने चाहिए। आप बताइए मुझे, सामने वाले का दिल रखने के लिए आपने कोई झूठ बोला हो, या छोटे मोटे झूठ जो है अक्सर रिलेशनशिप में लोग बोलते हैं वो बताइए आज मुझे 3311063 पर मैसेज करके। 3311063 इज द नंबर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए। एंड फिर से नंबर बता देती हूँ मैं, 3311063 पर मैसेज करके आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से छोटे मोटे झूठ है जो रिलेशनशिप में चल जाते हैं, क्यूट से झूठ है हम बोल देते हैं अक्सर। फिलहाल मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

मुझे यार, वरना मैं वाइब करने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी। ऐसे गाने जो है वो मुझे बहा के ले जाते हैं अपनी वाइब में और मुझे जो है वापस आने में काफी वक्त लग जाता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक येट बहुत ही फनी टॉपिक पे बात कर रहे थे। मतलब फनी है ये टॉपिक, लेकिन अगर कोई दिल पे ले ले तो ये बात सीरियस भी हो सकती है। सो कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आई थी एंड मेरे इंस्टाग्राम पे भी आई है कि एक अंकल 62 ईयर्स तक अपनी शादी में प्रिटेंड करते रहे कि यार उन्हें सुनाई नहीं देता, ताकि वो जो उनकी वाइफ है उनकी बातें इग्नोर कर सके। वैसे तो ये बहुत ही सीरियस चीज है, लेकिन अब हम इसे मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन सोचा जाए तो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। लेकिन अगर लाइट हार्टेडली ही बात करें तो रिश्ते में ऐसे बहुत सारे झूठ है जो हम अक्सर बोल दिया करते हैं। सो बस वही झूठ मैंने आपसे पूछे थे कि जो टाइनी से जो प्यारे प्यारे से झूठ अक्सर रिश्ते में बोल दिए जाते हैं वो कौन कौन से है। तो कुछ लोगों ने हमें भेजे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती वरना क्या पता कलेश हो जाए लाइफ में। सो इसीलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो झूठ है जो अक्सर रिश्ते में बोला जाता है वो है कि बस 5 मिनट में तैयार हो रहा हूं या हो रही हूं, मुझे बस 5 मिनट लगेंगे तैयार होने में। ये तो देखो सिर्फ रिश्ते मतलब सिर्फ एक कपल वाले रिश्ते में नहीं होता, ये तो हर रिश्ते में बोला जाता है, क्योंकि पापा जो है वो पहले ही तैयार होकर बैठ जाते हैं किसी भी फंक्शन में जाने से पहले एंड हम सब बस बोलते हैं कि बस 5 मिनट में तैयार हो रहे हैं पापा। उसके बाद मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत पसंद है यार। ये बात तो है, देखो मतलब आप अपने पार्टनर के फ्रेंड को पसंद करने का जो एक प्रिटेंशियस मतलब एक एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आते हो ना, वो तो ज़रूरी भी है। देखो अगर आपको अपना जो रिश्ता है वो स्वीट एंड फ्रेंडली चाहिए तो, क्योंकि दोस्तों के आगे तो कुछ नहीं है। देखो उसके बाद है, नहीं तुम बिल्कुल जो है मोटी या मोटे नहीं लग रहे हो, तुमने वेट पुट ऑन नहीं किया है। यस, ये स्पेशली जो है तैयार होने के बाद बोला जाता है। एंड अगर मतलब मैं एज अ फ्रेंड्स फैन बता रही हूँ कि अगर आपने सामने वाले ने आपसे पूछा है कि क्या मैं जो है थोड़े से यू नो चबी लग रहा हूँ या मैं मोटा लग रहा हूँ, तो और अगर आपने उन्हें देखा और फिर आंसर दिया कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लग रहे हो, तो भी आप जो है प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। देखो क्योंकि बिना देखे आपका रिफ्लेक्स होना चाहिए कि क्या मैं मोटा लग रहा हूँ, क्या मैं मोटी लग रही हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत क्यूट लग रही हो। ठीक है, उसके बाद एक जो अक्सर झूठ लड़कियां बोलती हैं एंड वो चाहती हैं कि आपको पता हो कि ये झूठ है, वो है कि मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, नहीं सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ, गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा है। सो ये एक झूठ की झूठों की कुछ लिस्ट थी जो हम अक्सर रिश्ते में बोल देते हैं। अगर आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल मैं जो है यहाँ पे पढ़ूंगी वैसे। ओके, सो वैसे तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, सो इन पे हम थोड़ा सा और टाइम जो है वो लगाएंगे, थोड़ा सा आप लोगों के मैसेजेस का भी इंतजार कर लेते हैं। 3311063 इज द नंबर, इस पे आप जो है मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल झूठ से हटकर हकीकत पे आते हैं, तू ही हकीकत गाना जो है तुम मिले मूवी से आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो और जरा हकीकत वाला गाना सुनते हुए झूठ के बारे में मुझे बताओ। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से बता दो, मुझे इंतजार कर रही हूं मैं आपके मैसेज का। सेडियन जियो बंदा।

Yes, guys. Diljit Dosanjh ka gana amazing wala aapne suna 106.3 Radio Oliver. मैं हूँ आपकी कोशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि ये जो 62 इयर्स तक अंकल जो है एक, वो ये प्रिटेंड करते रहे कि उन्हें सुनाई नहीं देता है, ताकि वो आंटी की जो बातें हैं उन्हें इग्नोर कर सके, उन्हें ना अनसुना कर सके, उन्हें सुन ही ना सके। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब अंकल का ये जो भांडा ये फूट गया एंड आंटी जी को पता चल गया, उनकी वाइफ को पता चल गया, एंड उसके बाद उन्होंने जो है उन्हें बैठा कर पूरे 62 इयर्स का हर दिन का बदला जो है वो लिया। सो ऐसे कौन कौन से झूठ है जो आप अक्सर रिलेशनशिप में बोल देते हो, इस पर हम बात कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किए हैं एंड मैंने कुछ आपके सामने पढ़े भी, लेकिन आइए एक और बार हमारे मैसेजेस की ओर देख लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ खान जी ने लिखा है, कशिश वैसे झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां झूठ बोलना ही पड़ता है, वो भी किसी का फायदा कराने के लिए। तो देखिए, बात तो सही है यूसुफ जी, मैरिड लोगों से ही हम ये वाली सजेशन ले सकते हैं। वैसे रिश्ता चाहे कोई भी हो, कभी ना कभी तो आपको झूठ बोलना ही पड़ता है। जैसे मम्मी को भी आपने अक्सर झूठ बोला होगा ना कि मम्मी हाँ खाना जो है वो बहुत अच्छा बना है, कि पापा मैं तो घर पे ही था, मैं तो सो गया था 12 बजे, लेकिन आप तो फोन स्क्रोल कर रहे थे। ऐसे छोटे छोटे झूठ जो है वो अक्सर लोग बोल देते हैं। वैसे देखिए, एक अमेजिंग ऑल फिर सॉन्ग ऑफ द RRR ऐप की रेडियो सेट्स पर चुनरी चुनरी लेट्स गो, ये अभी जो है मेरी प्लेलिस्ट का एक हिस्सा सा बन गया है। इसके बिना जो है मैं तैयार नहीं हो पाती हूँ, तो हर रोज इसे प्ले करती हूँ। सो आप ये गाना इंजॉय करके आइए, उसके बाद जरा मूवी आपको एक रिकमेंड करने वाली हूँ मैं। और ट्रस्ट मी, ये जो मूवी मैं आपको बताने वाली हूँ ना आकर, ये बिल्कुल लीग से हटकर है। ये किसी मतलब किसी बहुत बिग बजट यू नो प्रोडक्शन हाउस का पार्ट नहीं है, एक छोटी सी नॉर्मल लाइफ स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ, एंड कहते रहिए जियो बिंदास।

शहर में का ये गाना आपने इंजॉय किया. और हाँ, मैं जो है शो को सर नहीं बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने शहर क्यों बोला वो बताती हूँ आपको. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अब देखो यार, क्या होता है ना कि कुछ मूवीज का जो टाइटल है वो बहुत सोच समझ के रखा जाता है. एंड ऐसे ही एक मूवी का टाइटल था दो दीवाने शहर में, जहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली मृणाल ठाकुर एंड सिद्धांत चतुर्वेदी की. बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है, बहुत ही अमेजिंग क्यूट सा है. आपको दोनों कैरेक्टर्स में कहीं ना कहीं खुद आप खुद को देख लोगे यार. कुछ इनसिक्योरिटीज हैं और किस तरीके से एक रिलेशनशिप में आप सामने वाले की इनसिक्योरिटी को जो है वो कवर अप करते हो, दूर करते हो, इसके ऊपर पूरी फिल्म है. एंड इट्स नाइस. मुझे एंडिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी थी, बट बहुत अच्छी मूवी है, एक बार जरूर देखना. एंड आज का मूवी रिकमेंडेशन जो है वो भी मैं आपको देने वाली हूँ. मूवी का नाम है सिनेमा बोंडू. ओके, सो वो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मूवी जो है मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते जो है डिस्कवर की है, जिसमें एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को इंडिया में जो है एक मूवी कैमरा मिल जाता है. मतलब जो उसका पैसेंजर होता है वो गलती से छोड़ देता है एंड वो उसे वापस करने की कोशिश करता है, बट उसे कहीं मिलता नहीं है वो इंसान. सो वो उस कैमरे का क्या करे, बहुत देर तक वो ये सोचता है एंड उसके बाद फिर वो डिसाइड करता है कि क्यों ना हमारे पास कैमरा है तो इससे मूवी बनाई जाए. एंड अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर वो एक मूवी बनाता है और वो जो जर्नी है वो आपको बहुत खूबसूरत लगेगी. किस तरीके से वो एक मूवी डिज़ाइन करता है एंड अपने आसपास के लोगों को जो है वो मूवी के लिए लेकर जाता है. सो आपको एक बार ये ज़रूर से देखनी चाहिए मूवी, अगर आप सिनेमा लवर हैं तो. मतलब सिर्फ आपको सिनेमा देखने में नहीं, उसके प्रोसेस में भी मज़ा आता है, उसके बनने के प्रोसेस को देखने में मज़ा आता है. आप वो इंसान हो जो BTS भी देखना चाहते हो मूवीज़ की, सो ये मूवी आपके लिए है. एक बार ज़रूर से इसे ट्राई करना. फिलहाल कॉकटेल 2 मूवी से एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए. आपकी कशिश के साथ रहिए जियो बिंदास.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:12. दैट इज 12:12. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
2: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
4: This is Amaira Dastoor on Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट.

0: एक विलन रिटर्न से गलियार रिटर्न आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अब देखो यार, फैशन की दुनिया में ना हर रोज कुछ ना कुछ बदलता रहता है. अब इतने सालों से हम फैशन में एक रूल जो है वो हमेशा अपने साथ मान के चल रहे हैं कि अगर आपके बैग में, आपके बेल्ट में, आपके शूज में कोई गोल्डन एक्सेंट है, आपकी शर्ट के, आपकी ड्रेस के बटन अगर गोल्डन है तो आप उसे गोल्डन एक्सेसरीज के साथ ही पेयर करेंगे, गोल्डन नेकलेस या गोल्डन ईयरिंग्स और गोल्डन ब्रेसलेट्स ही जो है आप पहनेंगे. या अगर ऐसे ही सिल्वर के साथ है तो आप सिल्वर ही पेयर करेंगे. अगर आपके बैग में कहीं सिल्वर है और आपने गोल्डन एक्सेसरी पहन ली तो ये मिसमैच हो जाता है, जो अच्छा नहीं लगता. लेकिन अब वक्त बदल चुका है. जी हाँ, अब फैशन की दुनिया में ये रिवॉल्यूशन आ चुका है कि आपको जिसको जिस चीज के साथ पहनना है पहनिए. गोल्डन आपने जो है इयररिंग पहना है, आपको सिल्वर नेकलेस पहनना है, आप पहन सकते हैं. मतलब मुझे ये अभी थोड़ा अटपटा लग रहा है, अजीब लग रहा है, लेकिन अब फैशन की दुनिया में ये मिक्स मैच जो है वो शुरू हो गया है. अब आप गोल्डन को सिल्वर के साथ पहन सकते हैं, क्रोम के साथ पहन सकते हैं, रोज गोल्ड कलर के साथ भी पेयर कर सकते हैं. इन शॉर्ट, आपको जो एक्सेसरी जिसके साथ देखने में अच्छी लग रही है आप पेयर कीजिए. फैशन का अब कोई रूल नहीं रह गया है. सो अगर आप अभी तक वो इंसान थे जो ये पेयर कर रहे थे कि यार मेरी बेल्ट का जो बकल है वो सिल्वर कलर का है तो मैं ज्वेलरी जो है वो गोल्डन नहीं पहन सकता, या अगर मेरे जूते जो है उनमें कहीं ना कहीं सिल्वर है तो मैं जो है सिल्वर इयररिंग्स नहीं पहन सकती, तो ऐसा कुछ भी नहीं. अब ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है. तो एक बार ये वाला ट्रेंड ट्राई करके देखो, हो सकता है कि अच्छा लगे, या जो लोग पहले से कर रहे थे वो लोग बोल सकते हैं कि यही न्यू ट्रेंड है, आप लोग जज करना बंद कीजिए. वैसे देखिए, फैशन वही होता है जो आपके दिल से आए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो पहनिए, बाकी किसी के जजमेंट की कोई जो है ना जरूरत है ही नहीं. फिलहाल एक कूल सॉन्ग ऑफ द आर आर एम रेडियो सेट पर इसे एंजॉय कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदा.
1: Awesome. Radio Olive Pad. Aane wala gaana. Cool song of the hour. Song of the
2: hour. Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Awesome.

0: Olive, 106.3 FM, Gio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: देखिए हमें तो कोई गाने डेडिकेट नहीं कर रहा, तो हमने सोचा खुद को खुद ही गाने डेडिकेट कर देते हैं। सो अजब लहर है, एक वाइब वाला लहर वाला गाना जो है हमने आपको सुनाया 106.3 रेडियो एफ एम। मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, जैसे ही मैसेजेस खोलती हूँ, या तो लोग मुझे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे कह रहे होते हैं, या तो जो है वो मुझे बाहर की मौसम की फोटो भेज रहे होते हैं, या फिर बोल रहे होते हैं कि देखो हमने तो कशिश बैक टू स्कूल में अपने बच्चों को रजिस्टर कर दिया है, तो क्या हम अपना रजिस्ट्रेशन पक्का समझे? अरे बिल्कुल पक्का समझिए। अगर आप बैक टू स्कूल की मतलब हमारी रेडियो ऑलिव की वेबसाइट पर जाके बैक स्कूल का फॉर्म भर चुके हैं एंड आपने रजिस्टर कर दिया है, तो बस अपना रजिस्ट्रेशन पक्का जो है वो समझिए, एंड बस आपको आना है इस 27th of August को अबू सिद्रा मॉल में दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। वहां पर हम बहुत सारा फन मस्ती मजा करने वाले हैं, बच्चे जो है एक्साइटिंग वाले गेम्स खेलेंगे, अमेजिंग चैलेंजेस करेंगे, एंड एक बार स्कूल में किताबें खोलने से पहले खुल के जो है हंसेंगे, खेलेंगे एंड यू नो एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि देखो समर वेकेशन को एक अच्छा क्लोजर तो मिलना चाहिए ना, बस इसीलिए। सो बैक टू स्कूल का इंतजार जो है वो आप लोगों से ज्यादा, ट्रस्ट मी, मैं कर रही हूं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार एक समर वेकेशन से तो वापस मैं भी आ रही हूं।
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holdings.

मिलते हैं बैक टू स्कूल इवेंट में अबू सुदरा मॉल में. फिलहाल आतिफ असलम की आवाज में तू जाने ना गाना जो है अजब प्रेम की गजब कहानी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पे. वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो. मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में. जी ओ बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी।

देखिए राता तो लंबिया थी लेकिन हमारा ही जो दिन था ये उतना लंबा नहीं था। ये टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। आपको टाटा बाय बाय करके यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। मैं हूँ आपकी कसर शो, आप मेरे साथ लाइफ मस्त है, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब मैं यहाँ से चलती हूँ। मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे वापस इसी शो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, एंड गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना। फिलहाल ऑल फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द आवर के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। टाटा बाय बाय, take care and stay tuned to Radio Olive Jio Bindas. Radio

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय, दिस इज कैलाश खेर एंड यू आर लिसनिंग टू कतार्स फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: सुनो
2: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा
2: द वेट इज फाइनली ओवर बी रेडी टू शॉप
4: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है कॉल 4411133 ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम
0: Olive Music Marathon. 1 ghanta. 1 ghanta. Non-stop back to back.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर ऑफर।
2: Olive Music Marathon, एक घंटा non-stop back to back गाने।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Oh no! Fir se school! अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले

0: आज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां पे हम गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो धीरे धीरे धीरे आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे ना मैं एक चीज सोच रहा था बैठ के, यार हमारी जिंदगी अगर एक मूवी होती, एक फिल्म होती, तो उसका नाम क्या होता? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई मूवी का नाम रखते या फिर कोई नया नाम रखते? तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपनी जिंदगी को एक मूवी टाइटल देना चाहते तो कौन सा टाइटल देते? अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मूवी का टाइटल देना चाहते तो बताइए, या फिर एक नया टाइटल आप खुद बनाते हैं तो भी बताइए। 3311063 पर मैसेज कीजिए। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

यार कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो और वो कोई टॉपिक छेड़ देता है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, मगर फिर भी आप सर हिला देते हो। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, स्पेशली 11th 12th की बात थी, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो थोड़े ऐसे पढ़ाकू टाइप लोग थे, ठीक है। वो बहुत पढ़ाई करते थे, अच्छे से पढ़ाई करते थे, साइंस गीक्स थे बेसिकली वो। तो जब वो कोई बात ऐसे बोलते थे ना, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं कि क्या बोल रहे। दो मिनट के लिए मेरा ब्रेन बोलता कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, तू संभाल ले करके, ठीक है, ऐसा हो जाता था। तो मैं भाई फुल ऑन प्रिटेंड करता था कि हाँ अरे बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो यार, ये तो कैसे नहीं पता होगा करके। वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते थे। बट उसका फ़ायदा हुआ, मैं बैठ के सुनता था, सुनने के बाद मुझे पता है कि मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता था, घर जाके उसके बारे में सर्च करके देखता था और फिर मैं उसे रीड करता था। तो ऐसे ऐसे मुझे भी चीज़ें जानने को मिली। तो इसलिए मैं कभी कभी क्या करता हूँ, अगर कोई कुछ बोल रहा है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं चुप बैठता हूँ, मैं बस सुनता रहता हूँ उन्हें। और कभी कभी अगर आगे वाले ने पूछ लिया अप फ्रंट कि हाँ भाई इसके बारे में पता है, तो मैं सच बोल देता हूँ कि नहीं भाई नहीं पता। पहले की तरह प्रेटेंड नहीं करता, मगर हाँ वो प्रेटेंड करने में मज़ा जरूर आता था। कभी आपने ऐसा किया है तो बताइए मुझे 3311106 पर। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

एक सवाल मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा और वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि सुदेव, 24 घंटों के लिए तेरे पास अंधा पैसा हो, बहुत पैसा, रिच तो हो जाए, तो तू क्या करेगा? और उसने कैच बोला, बट कैच है कि तू ये पैसा ऐसे सेविंग्स अकाउंट इन सब में नहीं डाल सकता, इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये सब नहीं कर सकता। 24 घंटे के लिए पैसे तेरे पास रहेंगे, बहुत पैसे तेरे पास होंगे, मतलब अंधा पैसा तेरे पास होगा, उन पैसों के साथ तू क्या करेगा? अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सेविंग, ये सब करके क्या खरीदेगा, किन किन एक्सपीरियंसेस में तू जो है वो पैसा डालेगा? तो मैं थोड़ा अचंभित हो गया था, क्योंकि अपन तो यही सोचेंगे भाई इतना पैसा आएगा तो उसका इतना हम इन्वेस्ट करेंगे, इतना हम सेव करेंगे, FD डालेंगे, RD डालेंगे, SIP शुरू करेंगे, SWP शुरू करेंगे, तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस तो खत्म हो गई स्टार्टिंग में। तो फिर हम सोचते हैं कि हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो आप भी जरा मुझे बताइए, 24 घंटों के लिए अंधा पैसा आपके पास आ जाए, आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो आप क्या क्या करोगे, कहाँ कहाँ खर्च करोगे? 3311106 पर आप मैसेज कीजिए, बताइए मुझे इस सवाल का जवाब। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
2: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि फोन आपके हाथ में है मगर आप फोन ढूंढ रहे हो? कभी कभी आप इंस्टाग्राम खोलते हो और क्यों खोला भूल जाते हो, और कभी कभी आप एकदम से कमरे में जाते हो मगर उस कमरे में क्यों गए इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं रहता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो माई फ्रेंड, आप अकेले नहीं हो। मुझे लगता है हम सबके साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये हुआ है। तो रिसेंटली मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था और तो मम्मी मुझे बता रही थी एक दिन वो अपना फ़ोन ढूंढ रही थी। तो बेसिकली मम्मी और मौसी जो है बैठ के बात कर रहे थे और मम्मी ने अपना फ़ोन मौसी को दिया कुछ टिकट का देखने के लिए, और उसके बाद मम्मी फ़ोन ढूंढ रही है अपना। तो मौसी पूछी कि क्या हो गया, तो बोली नहीं मैं फ़ोन ढूंढ रही हूँ अपना, मैंने कहाँ रख दिया याद नहीं आ। तो मौसी बोली ये क्या दिया तूने फिर मुझे। तब जाके मम्मी को याद हुआ। और इत्तेफाक की बात यह है कि यही सेम सिचुएशन मौसी के साथ भी हुआ और यही सेम सिचुएशन मेरे साथ एक बार हुआ था जब मैं स्कूल में था। पेन को मैंने अपने कैप में फंसा दिया था और थोड़ी देर बाद मैं पेन ढूंढ रहा हूँ और एकदम से मेरी टीचर आई, पूछी क्या हो गया। मैंने बोला मैम पेन नहीं मिल रहा। तो उसने मेरे कैप से मेरे ऐसे पेन निकाला, बोला कि ये लो। तो ये ब्रेन फेलियर मोमेंट्स अगर आपके साथ हुए तो दिल छोटा नहीं करते प्यारे, कहीं ना कहीं हम सबके साथ हुए। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा 27 अगस्त को होने वाले अबू सिद्रा मॉल में होने वाले बैक टू स्कूल बैच के बारे में, जहां पे बहुत बढ़िया रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए थे, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए थे, उनमें से सेलेक्टेड लोगों को मौका मिलेगा इस बैक टू स्कूल बैच का हिस्सा बनने का। एक फन फिल्ड इवनिंग, बहुत सारे गेम्स होंगे, गिफ्ट्स होंगे, थ्रिलिंग एडवेंचर होगा, साथ ही साथ बच्चों के साथ स्कूल खुलने से पहले फन करने का एक मौका। और यही बात बताते हैं हम, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And Doha Center, shop more, pay less.
3: Old Airport Road, Doha and Alcor.
1: Call 70222525.
4: Creative partner Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
6: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हमने लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज।
4: ओलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
4: Radio

आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे मैं एक चीज सोच रहा था, ठीक है, हम सब जानते हैं कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुका है। इनके बिना सोच पाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर एक चीज के लिए कहीं ना कहीं अब दोस्तों से बात करनी या फिर ऑफिस का कम्युनिकेशन हो, कहीं ना कहीं वो व्हाट्सएप के थ्रू हो जाता है। थोड़ा अपने लाइफ के बारे में ग्लैम दिखाना हो तो इंस्टाग्राम यूज़ कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, गाने सुनने के लिए, चीज़ों के बारे में देखने के लिए, रिव्यूज़ के लिए हम यूट्यूब भी यूज़ कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। मगर इनमें से एक अगर आपको डिलीट करना हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनमें से कोई एक आपको फॉरएवर डिलीट करना हो तो आप कौन सा करोगे? कि हमेशा के लिए डिलीट कर रहे हैं, अब वापस जाना ही नहीं है उसमें, तो कौन सा प्लेटफॉर्म आप डिलीट करोगे मुझे बताइए 3311063 पर मैसेज करके। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ओली 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, ठीक है। तो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे जब मैं पढ़ाई करता था एग्जाम के एक दिन पहले, तो मैं क्या करता था, सिलेबस ऐसे निकाल के रखता था, ठीक है, हर एक मॉड्यूल में कितने टॉपिक्स हैं, और जब जब मैं टॉपिक खत्म कर देता था उस टॉपिक को मैं पेन से ऐसे काट देता था सिलेबस में। तो ये जो है ना, मुझे एक डोपामिन देता था कि चलो इतना हो गया, इतना और बचा, ये भी कर लेते हैं करके। सिमिलरली हम टू डू लिस्ट अगर बनाते हैं ऑफिस के लिए या फिर घर के काम के लिए, एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और जैसे जैसे एक काम हो जाता है उसे काट के जाते हैं या फिर चेकबॉक्स में डाल के जाते हैं, वो हमें भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि चलो इतना हमने कर लिया है, इतना और बचा, ये भी हम कर लेंगे करके। तो ये छोटा सा ट्रिक है जो हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे 27 अगस्त को अबू सिद्रा मॉल में बैक टू स्कूल बैश होने वाला है। स्कूल जाने से पहले, स्कूल खुलने से पहले, बस्ता जमाने से पहले चिल करने का, फन करने का, बहुत बढ़िया तरीके से मस्ती और धमाल करने का एक इवनिंग है। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए, उनमें से सेलेक्टेड रजिस्ट्रेशन को कॉल बैक जाएगा, इनवाइट जाएगा और वो हिस्सा बन सकते हैं इस बहुत ही शानदार इवनिंग का। और यही बात बताते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Awesome.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे हम एक चीज आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जानिए क्या किया ये। हाँ सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे, सर्च कीजिए radioolive.qa, वहां पे अगर एक फॉलो बटन दिख रहा है तो उसे प्रेस कीजिए। फॉलोइंग है ऑलरेडी तो बहुत बढ़िया, और आप हमारे कॉन्टेंट को चेकआउट कर सकते हैं, पोस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट सेव कर सकते हैं। हमें सुनते हुए आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, टैग कीजिए हमें, हम आपकी स्टोरी को रीशेयर करेंगे। और उसके साथ साथ बहुत सारे डिजिटल कॉन्टेस्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, तो आपके पास गिफ्ट जीतने के मौके भी हैं। तो मैं यही बताते हुए आगे बढ़ूंगा और कहूंगा जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: ले लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, पार्टी अभी बाकी है, तो आप पार्टी कंटिन्यू रखिए और मैं जरा निकलता हूँ। मगर जाते जाते जाते एक ही दरख्वास्त है आपसे, वो यही है कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

सिमरन को इतना ही प्यार चाहिए क्योंकि आज सिमरन दिवस है यार, आज सिमरन का बर्थडे है। जो कि आपने मुझे भेजी है, और अगर आपने मुझे अभी तक नहीं भेजी है तो 4 घंटे वे भी आप नहीं है, भेजते रहो 3311063 पर, और यही नंबर है जहां पर आपने मुझे बताना है कि आपका आज का दिन कैसा रहा। बैठी है।

जिंदगी में नाजी शो में आ जाओ यार। की शुरुआत हो चुकी है, वीकेंड जा चुका है, लेकिन मैं तो आ चुकी हूँ। टेंशन किस बात की लेते हो यार? सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास। आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हो, तो भूलिएगा मत कि मुस्कुरा रहे डार्लिंग।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: ओह नो, फिर से स्कूल।
3: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ओलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले

0: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's top most Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
2: साथ। Zabardast evening, make your drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: जी कमाल खान की आवाज में कमाल के सलमान खान डांस करते हुए। पता हमारे दोस्तों के बीच में सलमान खान का टॉपिक बहुत ज्यादा छिड़ता है जब वो ऐसे फेज में थे। बहुत बढ़िया दोस्त,
1: आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे।
0: थैंक यू जी,
1: बहुत बहुत मुबारक हो, हमेशा खुश रहे। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए।
0: थैंक यू है जी,
1: इसी तरह लोगों को एंटरटेनमेंट करती रहे।
0: थैंक यू सो मच जी।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी।
2: सिमरन मनीष यार।
0: हाय मनीष,
2: विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस।
0: थैंक यू सो मच। सुबह से आज बस मैं थैंक यू सो मच ही कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे विशेस जो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, आप लोग बहुत सारा प्यार जो है वो बरसा रहे हो और मेरा पूरा दिन बस ऐसे ही आज केक काटते हुए। कल से एक्चुअली पार्टी वार्टी कर रही हूँ और नींद भी अच्छे से नहीं हुई है, बस आज बर्थडे का दिन ऐसा है कि अभी शो के बाद सीधा मेरे को जाके मस्त एक नींद लेनी है ताकि ये जो कल से नींद पूरी नहीं हुई है वो जरूर हो जाए। बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। 5:22:17 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं, एक नंबर गाने चल रहे हैं क्योंकि
3: रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है,
0: बंदे के साथ ये बंदी भी बिंदास है और हम भी बोलते हैं जियो बिंदास है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: मुझे लग रहा है कि आज मैं कोई और बात कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि आप लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। बर्थडे विश यार, थैंक यू सो मच।
1: हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिमरन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सालगिरह का ये दिन।
0: थैंक यू सो मच।
1: अल्लाह करे आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे और आपकी इतनी इतनी इतनी अच्छी और स्वीट आवाज हम हमेशा ऐसे ही सुनते रहे। आप मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हो सिमरन, आई लव यू सो मच। और अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे खुशियों से और कामयाबियों से, आपकी जिंदगी भर दे। गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। अल्लाह हाफिज।
0: यार इतना सारा प्यार मैं कैसे समेटूं यार, आप लोग इतने प्यारे प्यारे बर्थडे विशेस जो है वो मुझे भेज रहे हो और कुछ नहीं चाहिए यार लाइफ में। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, बैक टू स्कूल बैच बच्चों को भी नहीं भूलना चाहिए। 27th को अबू सिद्रा मॉल में होने वाला दोपहर 3 से लेकर 7 बजे तक के बीच में, मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि अगर आपने रजिस्टर करवाया था तो आप लोग इन्वाइटेड हो, तो फिर आपको अबू सिद्रा मॉल में मिलेंगे, तो आपको अलग से कोई कॉल नहीं आएगा। तो हम लोग आपको बता रहे हैं कि अगर आपने रजिस्टर किया तो डार्लिंग आप लोग इनवाइटेड हो यार। सुंदरी रेडियो ऑलिवगोर के जरिए जियो बिंदास।
2: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
2: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
2: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
3: कॉल 7022525।
2: क्रिएटिव पार्टनर, प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
4: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: इतने प्यार से कौन नहीं मानेगा यार, मना के तो देखो। मुझे भेज रहे हो, मुझे लग रहा है कि आज मैं कुछ और बात कर ही नहीं पाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मैसेजेस ही चलने वाले हैं।
1: वालेकुम
0: सलाम जी,
1: सिमरन जी हैप्पी बर्थडे। माशाल्लाह जी, आज तो हैप्पी बर्थडे है आपका।
0: बिल्कुल है जी,
1: चले जी, अल्लाह पाक खुश रखे आपको हमेशा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हंसती रहें, ऐसे ही लोगों को हंसाती रहें, दिल लगाती रहें।
0: थैंक यू,
1: और अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे आपको माशाल्लाह।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर हैं जो कि पहले कतर में थी, अभी वो कनाडा में है, और खास बात ये है कि उनका और मेरा बर्थडे एक ही दिन होता है। तो डेजी जी, मेरी तरफ से आपको बधाइयां जी।
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: थैंक यू।
2: हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर सिमरन। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, my dearest Simran.
0: Thank you so much, Daisy.
2: May God bless you with good health and happiness always.
0: Aww.
2: Lots of love coming all the way from Canada.
0: Aww.
2: And a big hug from our little Micah. Love you so kilo.
0: Love you too so kilo, Daisy ji. यार मजा आ गया यार, मेरे जो listeners हैं ना यार, मतलब emotional कर देते हो यार आप लोग, बस यही करे जा रही हूँ आज मैं पूरा दिन। 5:51 को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, आप लोग मुझे बता दो। So उसके साथ साथ क्या कैसा आपका आज का दिन वो भी आप मुझे बता सकते हो, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास। खौसला रघु का ये गाना भाई साहब बेवजह ना सामने, बहुत प्यारा है यार, अमेजिंग। और बताओ ठीक हो, खुश रहा करो यार।

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
3: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
4: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
3: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
5: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: थोड़ा थोड़ा प्यार आ रहा है और कतर की गर्मी से हमको थोड़ी सी निजात जो है वो मिलने वाली है, ऐसा बोल रहे हैं कि वो जो एक सुहेल सीजन जो है वो अब आ गया है। सुहेल सीजन, आई होप मैं सही बोल रही हूँ उसको, ठीक है। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर अच्छे दिन आ जाएंगे। मौसम अपडेट में हाल ये कि 38 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 39 डिग्री सेल्सियस है। शर्म चाहिए यार, 6:24 हो गए ने तो इतना ज्यादा बुरा हाल है गर्मी का। सो विंड जो है 11 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही, ह्यूमिडिटी 45% है। कल इतनी ज्यादा बैंड बज हुई थी मुझे याद है शाम के टाइम पे ना। मेरी दिक्कत यही रहती है कि अगर मैं किसी से बाहर मिलने जा रही हूँ इस टाइम पे तो ह्यूमिडिटी ना हो, क्योंकि हम जो चश्मे पहनने वाले लोग हैं ना उनकी बड़ी गंदे तरीके से बेइज्जती होती है कि हम जैसे यू नो कार से बाहर निकलते हैं और सामने वाला हाथ आगे करता है आपको समझ नहीं लग रहा हाथ लेफ्ट साइड है राइट साइड है कहाँ पे, वो इंसान ही दिखना बंद हो जाता है। पहले आपके आंखें जो है ना वो चश्मा जो होता है वो ह्यूमिडिटी आप पहले क्लीन करते हो फिर सामने वाले को ग्रीट करते हो। यार ये आपको नहीं समझ लगेगा यार, ये चश्मे वालों की दिक्कत है जब ह्यूमिडिटी होती है तो। अपने कदर में आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होता है। कल तो काफी ज्यादा बुरा हाल था यार। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: सर क्या पर ये बात है कुसाम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

हाँ जी ठीक हो, खुश रहा करो यार। बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें क्या है ना कि एक बेटी है, ओके, वो अपने बॉस के साथ जूम कॉल पे है और वो बात कर रहे हैं, काम के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स मीटिंग चल रही है, लेकिन सडनली उस लड़की का पार्सल आ जाता है, ओके, और उसके बाद उसके पापा जो है ना वो वीडियो कॉल के सामने आते हैं और वो बोल रहे हैं कि तेरा तो पार्सल आ गया। वो उसको चुप कराने की कोशिश कर रही है कि पापा मतलब मेरी मीटिंग चल रही है नॉन, सो के पापा रुक नहीं रहे हैं। उसके पापा उसके बॉस को बोलने लग जाते हैं कि मेरी बेटी को समझाओ कि ये सेविंग जो है वो बिल्कुल नहीं करती है, और बॉस मतलब इतना काम तरीके से उसको रिप्लाई करते हैं, कहता हाँ ठीक है, तो इसको सैलरी कहते कौन दे रहा है, तो उसका बॉस बोलता है कि मैं दे रहा हूँ, तो इसको समझाओ ना सेविंग करनी सीखे, हर दिन इसका नया पार्सल आ रहा है। वो बहुत ही क्यूट वीडियो है यार। 6:34:35 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। ऑलिव रिवाइंड में एक नंबर गाना आप लोगों के लिए आएगा यार, लव दिस ट्रैक। ब्यूटिफुल, और उसके साथ साथ सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास, आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हैं, तो मुस्कुराना तो बनता है यार।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ है, ठीक हो, खुश हो, बढ़िया चल रहा है लाइफ में, और लाइफ आपकी और भी बढ़िया हो जाएगी एक्चुअली जब आपके बच्चे जो हैं आप हमारे हवाले कर देंगे। सो बैक टू स्कूल बैच जो है वो होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में इस 27 तारीख को शाम को नहीं सिमरन कौर यार, दोपहर तीन से लेके शाम को 7 बजे तक होने वाला है। सो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर करवाया था olive.qa पे जाके, सो इतना जान लीजिए कि आपको कॉल नहीं आएगा हमारी तरफ से, बट अगर आपने रजिस्टर करवाया था खुद को तो आप इनवाइटेड हैं, आप आ सकते हैं, बट टाइमली आप पहुंच जाइएगा, बहुत सारा फन करेंगे क्योंकि आपके बच्चों को स्कूल में वापस भेजने से पहले पार्टी तो बनती है यार। 6:50 स्टूडियो की घड़ी पे और एक नंबर गाना सुंदरी रेडियो ऑलिव कोर कह दे रही है जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर offer.
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al

ਸਤਿਗਿਆਲ ਜਲ ਸਤਿਗਿਆਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਹਮ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ हिंदुस्तानी फिल्म के बारे में बात करेंगे। 1996 में दिवाली पे रिलीज हुई थी फिल्म। पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को लीड रोल के लिए बोला गया था, लेकिन उस टाइम पे वो एक्टिंग में अपना करियर नहीं बनाना चाह रही थी, वो अपना स्टडीज पे ध्यान दे रही थी, है ना। सो पूजा भट्ट को भी साइन करने के लिए बोला गया था इस फिल्म के लिए, लेकिन आमिर खान के साथ उनका ब्रेकअप टाइप्स जो था वो हो चुका था, ठीक है। सो इसीलिए वो इस फिल्म में काम नहीं करना चाह रही थी। उसके बाद धर्मेंद्र दर्शन जो थे इस फिल्म के डायरेक्टर, उन्होंने जूही और जैसे ऐश्वर्या को भी बोला पहले, तो जूही को भी उन्होंने अप्रोच किया था, बट कुछ डिफरेंट रीजन थे तो इस फिल्म में उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन फाइनली करिश्मा ने इस फिल्म को साइन किया और काफी ज्यादा बढ़िया किरदार निभाया था। इसके पीछे की एक और भी स्टोरी है जो कि मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। ओ बेबी रेडियो वाले बिंदास।

समझ यार, अभी तक भी आप बर्थडे विशेस जो है वॉइस नोट्स मुझे भेज रहे हो, मैं एक एक करके सुन रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं यार आप सब के। और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में, राजा हिंदुस्तानी। जी हाँ, राजा हिंदुस्तानी फिल्म जो है आई एम श्योर आप सब ने जो है वो देखी होगी। आमिर खान ने जो था इस फिल्म के लिए पहले जो था वो बोल दिया था कि भाई मैं ये फिल्म नहीं करूंगी, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर ने उनको बोला कि भाई ये फिल्म तू साइन कर, ये फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा, इस फिल्म में ऐसी पोटेंशियल है कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। सो फाइनली आमिर खान ने अग्री किया और उसके बाद ये फिल्म बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और बहुत बढ़िया वाली चली। एंड फिर उसके बाद ये मतलब बॉक्स ऑफिस पे बिगेस्ट हिट जो थी वो रही। बट इस करिश्मा कपूर ने जो इस फिल्म में रोल किया था उनका बहुत परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि सब ने राजा हिंदुस्तानी की जगह रानी हिंदुस्तानी बोलना जो था वो स्टार्ट कर गया। इस बात को लेके आमिर खान जो थे वो थोड़े से अपसेट भी हो गए थे। दो उन्होंने मतलब 8 नॉमिनेशन के बाद फाइनली इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर के लिए जीता था एंड वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाली बात थी। सो 7:18 स्टूडियो की घड़ी पर हो चुके हैं। एक नंबर गाने

0: वापस लौट के रियलिटी चेक होगा और नेम गेम भी होगा। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, गेदर ये जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: आप हमेशा वाइब की बात करते रहते हो, वाइब क्या है मैं बताती हूँ।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये है कि कभी आपने ये चीज महसूस की है, बहुत ही इजी मैं आपके लिए कर देती हूँ कि कभी किसी का कॉल आया तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है, कभी किसी का मैसेज आया तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप चाहे जितना मर्जी थके हो कि अगर उसने आपको बोल दिया कि चल बाहर चलते हैं तो आप मतलब पूरी दुनिया को ना कर सकते हो, उसको आप ना नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिससे मिलके आपको खुशी होती है, जिससे मिलने के बाद आपको ये लगता है कि यार ये टाइम इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, जिससे आप मिलने के बाद भी आपको लगता है कि यार दोबारा कब मिलेंगे, तो ये होती है वाइब। अगर आपकी किसी के साथ ये वाली वाइब मैच कर रही है जहां पर टाइम स्पेंड कर रहे हो लेकिन टाइम का पता ही नहीं लग रहा है, आप थके हुए हो फिर भी आप अपना टाइम जो है वो उसके लिए निकाल रहे हो, आप जितने मर्जी बिजी हो आप उसके लिए टाइम निकाल रहे हो, ये होती है वाइब। अगर आपकी किसी के साथ ये वाली वाइब मैच कर रही है तो भाई सा अनबिलीवेबल सीन होता है ये, और बहुत ही मजेदार होता है ये सीन। ओके सो मैं ऐसे लोगों के साथ मिलती हूं जहां पर मुझे थके होके भी थकावट महसूस नहीं होती है और अच्छा लगता है उनसे बात करना घंटों तक, जहां पर टाइम का पता नहीं लगता है। ठीक है जी, वापस लौट रही हूँ, नेम गेम खेलेंगे, टिल देन एंजॉय।

0: बैक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: जी मैं जी सुने की दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल और आप लोगों की बर्थडे विशेस नहीं रुक रही है यार।
1: हे सिमरन गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग।
1: सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाली है आपकी बर्थडे की तो मैंने वहाँ पे इंटरेक्ट किया था तो मैंने सोचा जी ठीक है हो गया था लेकिन फिर मैं दिल नहीं माना तो मैंने कहा मैं आपको दोबारा से विश कर देती हूँ।
0: थैंक यू सो मच।
1: हैप्पी टर्न्स ऑफ द डे मे यू हैव मेनी मोर एंड लिव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। हैप्पी बर्थडे अगेन डियर सिमरन।
0: थैंक यू सो मच यार। जिस तरीके से आप शो में मेरे को वॉइस नोट्स भेज रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, सोशल मीडिया पे जाके जो है वो बर्थडे विशेस कर रहे हो यार, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो नेम गेम जो है वो अगले घंटे खेलने वाले हैं, उसके लिए

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Hi everyone, I am Arman Malik. 106.3 FM, Radio Olive. Jio Bindas.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: लेकिन ये वाली विश जो इन्होंने जिस तरह से मुझे भेजी है, ऐसे मुझे कभी किसी ने नहीं बोला।
1: हेलो सिमरन, हैप्पी बर्थडे,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
1: बेस्ट विशेस,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: Enjoy your birthday. Eat whatever you want. I will pay for you. No issue. You can send me your foreign number. Okay. Thank you. My name is Surit.
0: Surit, thank you so much. कहते हैं कि जो आपका मन करे वो खा लीजिए, आप मुझे अपना foreign number भेज दीजिएगा, मैं pay कर दूंगा। Sweet यार, आप लोग कितने प्यारे हो यार। 8:18:36 स्टूडियो की घड़ी पे रात हो चुकी है। सावली सी रात के लिए बहुत ही सावला सा गाना।

0: वापस लौट के नेम गेम खेलूंगी और लेने वाली हूँ आप सबके नाम, सो तैयार हो जाइएगा।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

घन है यार, मजा ही आ गया सुन के। बस चांद को देखते देखते सोचो बाहर अगर ठंड हो, और चांद को देखते देखते ये गाना सुनो। आय हाय हाय हाय हाय, वो दिन भी आएंगे, कोई बात नहीं है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्पेशल बना दिया यार। चलो अब मैं आप लोगों का दिन स्पेशल बना दी हूँ, नेम गेम खेलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे बोल दूं, तो आप अभी के अभी अपना नाम मुझे लिख के भेज दीजिएगा 3311063 पर। जी हाँ, 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजिए। इरफान, जितेंद्र, इमाद, असीम, कृष्णा, सुमी, अख्तर, फरहान, तीरथ और शाबाज, अदील, मोहम्मद, सुरित, रवि, मुअज्जम, शेख, यम, फारूकी, आसमा, किरण जी, थैंक यू सो मच, अविनाश जी, थैंक यू सो मच, डेजी जी, थैंक यू सो मच, नजीबा जी, थैंक यू सो मच, असमीर जी, थैंक यू सो मच, समीरा जी, थैंक यू सो मच, हिमकुश जी, थैंक यू सो मच, मनीष जी, रेवा जी, थैंक यू सो मच जी, सलीम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपना नाम लिख के भेजो। सुभान जी, थैंक यू सो मच, केपी जी, थैंक यू सो मच, अली जी, थैंक यू सो मच, मोहम्मद उस्मान जी, थैंक यू सो मच, अदील जी, थैंक यू सो मच, लतीफुल्ला जी, थैंक यू सो मच, इमाद नासर जी, शाहबाज गुल जी, शेख अजहर जी, शानजिया जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सुमी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शुभम जी, थैंक यू सो मच, अनम जी, थैंक यू सो मच, महमूद जी, थैंक यू सो मच, अली जी, गुलाम जी, जावेद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। बहुत सारे हैप्पी बर्थडे भी लिख रहे हो यार आप, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वॉइस नोट और भी आए हुए हैं, मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगी। केरन जी, थैंक यू सो मच, विजय जी, थैंक यू सो मच, शर्मा जी, थैंक यू सो मच, मुझे लिख के हैप्पी बर्थडे ना भेज के अगर आप अपनी वॉइस में भेजेंगे तो मुझे आपकी आवाज़ सुन के अच्छा लगेगा, और जब आप वॉइस नोट भेजते हो ना तो ज़्यादा बढ़िया एक्सप्लेन हो सकता है यार, बढ़िया मज़ा आता है सुन के यार। एंड जिन लोगों ने अपने नाम सुन लिया, अब आप थैंक यू लिखिए और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दीजिए।

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ। रेडियो 106.3 जियो बिंदास। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: सुने हो कि दादी की हलचल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ और आप लोगों की विशेष के साथ ही शो शुरू किया था और विशेष के साथ ही खत्म कर रही हूँ। आज का दिन बड़ा अच्छा रहा यार, और आप लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया।
1: हाय सिमरन, हाउ आर यू?
0: गुड,
1: वेरी हैप्पी बर्थडे।
0: थैंक यू सो मच।
1: एक साल और पुरानी हो गई तेरी अलड़ जवानी।
0: स्वीट।
1: एक और साल पुरानी हो गई तेरी अलड़ जवानी।
0: मैंने ये गाना खुद के लिए बजाया नहीं था, क्योंकि वो खुद का बर्थडे है, खुद ही के बर्थडे पे ये वाला गाना बजाऊं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने गा दिया ना यार, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारी विशेज आई हैं, आप लोगों ने लिख लिख के मुझे भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार।

टच यार, बड़ा अच्छा लगा आज आप लोगों से, यू नो आप लोगों के साथ. मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार छुट्टी ले ली थी, बर्थडे है, छुट्टी ले ली थी, लेकिन यार ये जो टाइम है ना आज जो है वो सारा मैं मिस कर देती यार. चलो अब बाकी की बातें कल करेंगे शाम को 5 बजे जबरदस्त इवनिंग्स में. टिल देन खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे वड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना. बी नाइस टू एवरीवन यार. गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर्किलो.

गुड इवनिंग, वेलकम. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. भाई हफ्ते का पहला दिन, शुरुआत और काम की इतने सारे प्रेशर्स. सो कभी जिम में किसी को देखा है जो एकदम फिट है और सोचा कि यार मुझे भी ऐसा बनना है? मैं तो ऐसा हर दिन सोचती हूँ, लेकिन हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखते हैं. हमने ना वो संडे नहीं देखा जब उसने वर्कआउट का मन ना होने के बावजूद शूज पहने. वो बोरिंग मील्स नहीं देखे, वो छोटे छोटे डिसीजंस नहीं देखे जो किसी को भी इंस्टाग्राम पर इंटरेस्टिंग नहीं लगते. सक्सेस का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बिग चेंज यूजुअली बिग एक्शन से नहीं बल्कि स्मॉल एक्शन से, रिपीट होने से बनते हैं. सो आपको इस वीक लाइफ कंप्लीटली चेंज नहीं करनी है, बस एक चीज़ 1% बेटर बनानी है. और थोड़ा स्लीप, थोड़ा बेटर फूड, एक पेंडिंग कॉल, कोई 10 पेज की छोटी सी कोई स्टोरी या कोई किताब का कोई एक चैप्टर, कुछ भी. क्योंकि 6 महीने बाद 1% का वो टाइनी डिसीजन शायद आपको खुद का कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन दिखा सकता है. सो आप मुझे बताइए, इस वीक आप अपनी लाइफ में सिर्फ 1% क्या बेटर करना चाहते हो? बाय द वे, आई नो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सोच कर आए हैं. इस हफ्ते में ये करेंगे, वो करेंगे, बट इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी लाइंड अप होती हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ भूल से जाते हैं फॉर एटलीस्ट 5 डेज. वो फ्राइडे सैटरडे याद आता है सब कुछ. बाय द वे, आज ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे, आप कहीं मत जाइए. सुन रहे हो रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. एक लड़की ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया. इंटरव्यू अच्छा गया. उसे लगा दिस इज इट. फिर मेल आया कि वी आर सॉरी. बस मूड खराब, कॉन्फिडेंस डाउन. उस मोमेंट में रिजेक्शन लगने लगा था और मुझे लगा कि बस अब तो सब कुछ खराब हो जाएगा. मतलब फ्रेंड्स के साथ जब ऐसा होता है तो आपको बहुत बुरा लगता है. बट मंथ्स लेटर एक कम्प्लीटली डिफरेंट अपॉर्चुनिटी उसे मिली और वो जॉब, वही करियर, वही लाइफ जो उस रिजेक्शन के बिना शायद कभी पॉसिबल ही नहीं था. हम रिजेक्शन को ना फाइनल आंसर समझ लेते हैं, बट समटाइम्स रिजेक्शन इज नॉट. यू आर नॉट गुड इनफ. इट्स सिंपली नॉट दिस डोर. एक्चुअली मे बी लाइफ का सबसे पेनफुल नो कभी कभी आपको उस यस तक लेकर जाता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था. तो अगर आज किसी के इनबॉक्स में एक रिजेक्शन पड़ा है, प्लीज रिमेंबर, एक ईमेल आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता. आपका बिगेस्ट रिजेक्शन कौन सा था जो बाद में ब्लेसिंग की तरह निकला, बताना जरूर. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. और आई नो आज संडे को आपने बहुत काम किया है और उसके बाद अब जब आप सुकून से बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

सो हमने लाइफ को एक स्ट्रेंज टाइम टेबल बना दिया है, 25 तक ये करना है, 30 तक वो अचीव करना है, 35 तक सेटल होना है, और अगर किसी का टाइमलाइन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया तो हम बोलते हैं कि आई एम लेट। बट लेट फॉर वॉट? लाइफ कोई ट्रेन नहीं है जिसका एक फिक्स्ड डिपार्चर टाइम हो। किसी ने 25 में करियर फाइंड किया, किसी ने 40 में बिजनेस स्टार्ट किया, किसी ने 50 में अपना पैशन डिस्कवर किया, और किसी ने 60 के बाद रियलाइज किया कि अब मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। सो एज इज जस्ट अ नंबर। आपकी जर्नी का कैलेंडर किसी और के हाथ में नहीं है। तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, एज को एक्सक्यूज मत बनाइए। आप लेट नहीं हैं, बस अपनी टाइमिंग पर हैं। अगर एज का प्रेशर कंप्लीटली हटा दिया जाए तो आप आज क्या स्टार्ट करना चाहते हो, कौन सा ऐसा बिजनेस या कौन सी ऐसी जॉब है जिसे आप हमेशा से चाहते थे और आपको अब लगता है कि यार अब तो लेट हो गया। बट एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट नहीं हुआ है, आप मुझे बताइए आज आप क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? नंबर इज सेम 3311063। मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिन।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
3: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर ऑफर के साथ।
4: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
3: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
4: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टाकुलर।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज। कभी एक बैड डे ने आपको ये फील करवाया है कि बस मुझसे नहीं होगा? एक प्रेजेंटेशन खराब हो गया, कोई इंटरव्यू रिजेक्शन आ गया, बॉस से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, बिजनेस में कोई लॉस हो गया, या सिंपली एक ऐसा दिन जब कुछ भी सही नहीं आया। उस वक्त लगता है जैसे पूरी लाइफ खराब है, बट थिंक अबाउट इट, आपकी लाइफ का एक मतलब डे एक है। आज के बाद मतलब ये जो बैड डे है सिर्फ एक चैप्टर होगा, पूरी बुक तो बिल्कुल नहीं होगी। सो फनी थिंग ये है कि कुछ साल बाद वही एम्बैरेसिंग मोमेंट या फेलियर जो है वो आपकी फेवरेट स्टोरी बन सकता है। यार उस टाइम तो मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, बट सो टुनाइट, अगर आज का दिन परफेक्ट नहीं था तो हो सकता है कि दैट्स ओके, टुमारो डजंट हैव टू कंटिन्यू टुडेज स्टोरी। और मुझे तो हमेशा लगता है कि यार अगर 4-5 साल पहले वो रिजेक्शंस नहीं मिले होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो आपको भी बस ऐसे ही सोचना है, आपकी लाइफ में वो कौन सा मोमेंट था जो उस वक्त डिजास्टर लगा और आज शॉकर लगता है, मतलब गुड दैट इट हैपेंड, ऐसा आप सोचते हो। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल। किताबें खोलने से

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमेजिन कीजिए. आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं, लोग आपसे पूछ रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, एवरीवन नोज यू आर गुड एट व्हाट यू डू. और सडनली आप डिसाइड करते हो कि मुझे गिटार सीखना है. फर्स्ट क्लास फिंगर हर्ट होती हैं आपकी, साउंड जो है वो एकदम टेरिबल आता है और टीचर्स बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करो बॉस. अब ईगो का प्रॉब्लम है बिकॉज यू आर कंफर्टेबल बीइंग गुड एट समथिंग, बट बीइंग एट बिगनर मींस यू विल लुक सिली, यू विल मेक मिस्टेक्स, यू विल आस्क बेसिक क्वेश्चंस एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर ग्रोथ बिगिंस. मुझे लगता है कि कहीं कहीं तो भाई आपको ये सोचना चाहिए कि कहीं कुछ तो सीखने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा. मे बी सक्सेसफुल लोग जो हैं वो नहीं हर चीज़ में अच्छे हो सकते. वो है जो बार बार बिगनर्स बनने से डरते नहीं हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है वो जो एक निडर इंसान होता है ना, जिसे लगता है कि यार ये मैं स्टार्टिंग से सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ, वो हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं. सो अगर एम्बैरेसमेंट का फियर ना हो तो आप क्या नया सीखना चाहोगे? बाय द वे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं म्यूज़िक सीखना चाहूँगी, मैं गाना सीखना चाहूँगी. आप मुझे बताइए 3311063 पर. मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

टेनमैन की यहाँ कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज. हर कोई अपनी प्रोग्रेस अनाउंस नहीं करता. कुछ लोग चुपके से काम कर रहे होते हैं, किसी ने कुछ बहुत अपनी बुरी आदत छोड़ दी होती है, किसी ने पैसे सेव करना स्टार्ट कर दिया होता है, कोई डेली वॉक कर रहा होता है, कोई चुपके से कोर्स कर रहा होता है, कोई अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा होता है. इंस्टाग्राम पर कुछ नहीं, अनाउंसमेंट कुछ नहीं, बस काम चल रहा है और एक दिन रिजल्ट सामने आता है. हम कहते हैं वाओ ये तो सडनली हो गया, बट सक्सेस रेयरली सडनली होती है. हम बस उनका फाइनल सीन देखते हैं, इसीलिए अपनी प्रोग्रेस को हर बार प्रूव करना जरूरी नहीं है. कुछ सपनों को थोड़ा साइलेंस भी चाहिए होता है. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक पर्टिकुलर पढ़ाई छोड़ने के बाद, 5-7 साल नौकरी करने के बाद, एक नया MBA करने के बारे में, कोई AI के नए गैजेट्स के बारे में सीखने में, कोई नई कोडिंग सीख रहा होता है और चुपके से वो कब आगे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता. सो आप अपनी जर्नी अनाउंस करके चलना पसंद करते हैं या क्वाइटली काम करके?

गुड इवनिंग, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज. एक लिटिल इमेजिनेशन गेम. आज से एग्जैक्टली 6 महीने बाद, मतलब फरवरी 2027 ऑलमोस्ट, इमेजिन कीजिए आप सेम रूम में हो, सेम सिटी, सेम कंट्री, सेम लाइफ, लेकिन आप थोड़े डिफरेंट हैं. मे बी हेल्दियर, मे बी कामर, मे बी फाइनेंशियल मोर स्ट्रॉन्गर, मे बी यू हैव फाइनली स्टार्टेड समथिंग यू हैव बीन पोस्टिंग फॉर ईयर्स. और सोचिए वो 6 महीने बाद कौन सा वर्जन है आपका. आज के आपको देखकर आप क्या कहेंगे? मे बी थैंक यू फॉर स्टार्टिंग, मे बी थैंक यू फॉर नॉट गिविंग अप. फ्यूचर मैजिकली नहीं बनता भाई, वो आज के स्मॉल डिसीजन से क्वाइटली बिल्ड होता है. एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट जस्ट 1%. क्यों? इकिगाई किताब है, आपने देखा होगा, एटॉमिक हैबिट एक किताब है, वो बस आपको मोटिव और ये 1% के बारे में ही सिखाती है. सो टुनाइट अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक छोटा सा गिफ्ट डिसाइड कीजिए, एक डिसीजन जो आप चाहें कि 6 महीने के बाद आप खुद को उसके लिए थैंक यू बोलें. सो मेरे लिए वो मेरी हेल्थ है, मेरे लिए वो मेरा फिटनेस गोल है, मेरे लिए वो मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ है जिस पर मैं काम करना चाहती हूँ. आप मुझे बताइए आपके लिए वो क्या होगा. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो. बिंदास.

0: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

गुड इवनिंग, वेलकम बैक. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिड नाइट लाउंज. संडे नाइट का आज का लास्ट थॉट. कभी हम सोचते हैं मुझे सब कुछ रीसेट करना है, रीस्टार्ट करना है, नई जॉब, नई कंट्री, नई सिटी, नए लोग, लाइफ. बट मे बी आपको कम्प्लीटली न्यू लाइफ की जरूरत ही नहीं है, मे बी सिर्फ न्यू चैप्टर की जरूरत है. शायद यहीं पर आप कुछ बेटर कर सकते हो, आप कुछ नया सीख सकते हो, सेम लोगों के साथ, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, बस एक डिफरेंट डिसीजन लेने की जरूरत है. एक बाउंड्री, एक न्यू आदत, या फिर एक ओल्ड फियर को फाइनली गुड बाय करने की जरूरत है. क्योंकि स्टार्टिंग ओवर का मतलब पास्ट को इरेज करना तो बिल्कुल नहीं होता, इट मीन्स डिसाइडिंग वॉट कम्स नेक्स्ट. तो कल जब नया वीक स्टार्ट हो, एक प्रॉमिस कीजिए, इस वीक को परफेक्ट नहीं बनाना, बस डिफरेंट बनाना है. और अगर आज रात आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा हो, तो उस चैप्टर का टाइटल क्या होगा? मैं हूं मुस्कान और यह है मिडनाइट लाउंज. न्यू वीक है, नए प्लान्स होंगे, कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स भी होंगी, बट कहानी अभी बाकी है. सो विल मीट टुमारो, सेम टाइम सेम जगह पर. फॉर नाउ आई हैव टू से बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बे

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: देखो तो हम पास, लेकिन सोचो कितनी दूरी है, कैसी ये मजबूरी है।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास।
2: चांदनी

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।